में क्या लेके जाएगा, बस फ्राइडे का सुकून है उसी में शांति पाएगा। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, आरजे अदनान आपके साथ है। और आज है फ्राइडे वाली मॉर्निंग, और जिस तरीके से फ्राइडे वाली मॉर्निंग होती है, सुकून भरा एहसास होता है। क्यों पता है? क्योंकि फ्राइडे का वो दिन होता है जब पूरे हफ्ते की थकान एकदम एंड मोड पर आती है और हमारे सामने होता है वीकेंड। और जब सुबह हम फ्राइडे को उठते हैं ना, तो आज लगता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, फ्राइडे है, आज कितना भी काम का लोड रहा ना तो इंसान बोलता है ठीक है कर लेगी, आज जो होगा देखा जाएगा, मस्त। क्योंकि एक सुकून होता है फ्राइडे में, इस वजह से कहते हैं शुक्र है शुक्रवार है, क्योंकि आने वाला दो दिन वीकेंड है, तो आज का ही शुक्रवार एकदम अच्छे से गुजरेगा, इसी गारंटी मैं लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि आरजे अदनान की बात फतेह की बात होती है। तो इसी के साथ आज के शो का आगाज करते हैं, और बहुत सारी बातों मुलाकातों के साथ आज के शो में ताबड़तोब आपके लिए एंटरटेनमेंट का तगड़ा तो रहेगा ही इंफोटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए अभी आप उठिएगा, और कितना सोओगे यार, उठा सकाळ झाली आहे आणि आता शुद्ध शांती वाले आणि एकदम निरागस गाणी ऐकण्याची वेळ आलेली आहे। स्टे ट्यून्ड।

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपने सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन कल्चर एंड मीडिया ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति।

0: खबरों की दुनिया हो या कैमरे के पीछे की कमान, तैयार हो जाइए अपने सपनों की स्टोरी खुद लिखने के लिए।
1: MGM कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन कल्चर एंड मीडिया ला रहा है 30 सालों का मीडिया एजुकेशन का भरोसा, 5000 से ज्यादा सक्सेसफुल एलुमनाई नेटवर्क, 75 से ज्यादा इंडस्ट्री टाई-अप्स, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन और खुद का रेडियो स्टेशन।
2: एडमिशन ओपन फॉर BA MCJ, BA मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, BA इंटरनेशनल जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, PG डिप्लोमा और MA ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। विजिट MGM कैंपस N6 सिडको छत्रपति।

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक छोटा लड़का था, रोज स्कूल जाते वक्त रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बैठा मिलता। वो बूढ़ा आदमी भीख नहीं मांगता था, बस चुपचाप बैठा रहता। लड़का रोज उसे देखता और एक दिन उसने अपनी जेब से एक छोटा सा सिक्का निकालकर उस बूढ़े आदमी के सामने रख दिया। बूढ़े ने मुस्कुराया और कहा, बेटा तुम्हारे पास तो खुद ज्यादा नहीं होते पैसे, फिर भी तुम ये मुझे दे रहे हो। तो लड़का बोला, दादाजी मम्मी कहती है अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो उसे जाने नहीं देना चाहिए। उस दिन के बाद लड़का रोज कभी बिस्किट कभी फल कुछ ना कुछ दे देता। फिर एक दिन लड़का आया लेकिन वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। लड़के को थोड़ा दुख हुआ, वो चुपचाप स्कूल चला गया। कुछ साल बीत गए, एक दिन वही लड़का अब बड़ा होकर नौकरी के इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आया और लड़के को देखते ही मुस्कुरा दिया। लड़का हैरान था, वो चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। तभी उस व्यक्ति ने कहा, पहचाना मुझे? लड़के ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। वो आदमी बोला, मैं वही बूढ़ा आदमी हूँ जो सड़क के किनारे बैठा करता था। लड़का एकदम चौंक गया। वो आदमी बोला, मैं दरअसल लोगों की इंसानियत देख रहा था और उस दिन तुमने अपना आखिरी सिक्का देकर बता दिया कि तुम दिल से अमीर हो। फिर मुस्कुरा कर कहा, नौकरी तुम्हें मिल गई है, क्योंकि काम तो हर कोई सीख सकता है लेकिन अच्छा इंसान होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है, कभी कभी छोटी सी अच्छाई जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बन जाती है। तो अच्छा ही करते रहिएगा। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

Let's talk about healthy life. You are listening MGM 90.8 FM. All is well. देखो जनाब, क्या है, गर्मी का मौसम चालू है तो लाइफ को हेल्दी बनाना भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है यार। बहुत थकान लग रही है, ऐसा अक्सर हमें महसूस होता है इस गर्मी के अंदर। तो चलिए आज बात करते हैं गर्मी में थकान क्यों होती है और उससे कैसे बचा जाए। सबसे पहला रीजन है बॉडी का पानी कम हो जाना, यानी डिहाइड्रेशन। गर्मी में हम ज्यादा पसीना बहाते हैं और अगर पानी कम पिए तो बॉडी तुरंत लो फील करती है। तो टिप नंबर वन, हर 1-2 घंटे में पानी जरूर पियो। कम से कम 1 घंटे में तो आप जरूर पियो। सिर्फ पानी नहीं, नींबू पानी, बटर मिल्क या ORS भी चलेगा। टिप्स नंबर 2, लाइट और फ्रेश खाना खाओ। हेवी ऑयल फूड इसको थोड़ा अवॉइड करो, थकान इससे बढ़ती है। फ्रूट्स जैसे तरबूज, खीरा और आम ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। टिप्स नंबर 3, डायरेक्ट धूप अवॉइड करो। 12 से 4 के बीच बाहर जाना तो कैप या सनग्लासेस ये जरूर यूज करना। टिप्स नंबर 4, प्रॉपर स्लीप लो। गर्मी में बॉडी ऑलरेडी टायर्ड होती है, अगर नींद कम ली तो डबल थकान होगी आपकी। और टिप्स नंबर 5, अगर चक्कर, हेडेक या ज्यादा वीकनेस लगे तो इग्नोर मत करो, ये लू लगने के साइन हो सकते हैं। गर्मी से डरना नहीं है, समझना है और स्मार्ट बनना है। सो ये चीजें फॉलो करो, हेल्दी रहो और खुश रहो और सुनते रहो। All

0: और खैरी।
1: मेंटल हेल्थ ठीक रखिए भाई और ओवर थिंकिंग को भी कम रखिए। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। तो इसी पर बात करने के लिए अपने साथ है डॉक्टर मानसिक रजगांवकर मैम, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, ओवर थिंकिंग पर हम बात कर रहे हैं, तो ये कम करने के लिए कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी हैबिट्स बताइए।
2: सबसे पहली हैबिट तो है टाइम पर सोना और टाइम पर जगना, है ना, वही होना चाहिए। वो हमारे हाथ में है, लेकिन लाइक वी डिस्कस्ड कि हम करते नहीं हैं जो सिंपल चीज़ें हैं। तो सबसे पहला टिप है कि आपका स्लीपिंग टाइम फिक्स चाहिए एंड वेकअप टाइम फिक्स चाहिए, एक स्केड्यूल बनना चाहिए। सेकेंड चीज़ है हमारी फिजिकल मूवमेंट रोज़ होनी चाहिए। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, है ना, थोड़ा ग्राउंड एक्सरसाइज ही कर लीजिए, भले ही 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, लेकिन वो रेगुलरिटी से होना चाहिए। फिर डिजिटल टाइम जो है, एक फिक्स्ड फ्री डिजिटल टाइम या डिजिटल फ्री जोन, ऐसा कुछ हमको क्रिएट करना होगा लाइफ में, कि जैसे मान लीजिए रात में 10 से 12 या 9 से 11 या जो भी है, आप बिल्कुल फ़ोन को टच नहीं करेंगे, और 10 मिनट माइंडफुल रहना है, एक जगह बैठ के आंखें बंद करके बस सोचना है कि आज दिन भर में हमने क्या क्या किया और क्या क्या सही हो सकता था और बेहतर हो सकता था।
1: सो मैम ने जो चीजें बताई है वो फॉलो कीजिएगा और उससे भी आपकी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। सो ज्यादा सोचे मत, और भी सोचने के ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहे होंगे, वो माइंड में सवाल क्या है बताइए, पूछिए हमसे 9359320080 इस नंबर पर।

மார்னிங் சத்ரபதி சம்பாஜி நகர். யூ ஆர் லிஸ்னிங் MGM 90.8 FM. वक्त हो चुका है आज के गानों की फरमाइश पूरी करने का. सो आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो. बाय द वे, आज गाने की फरमाइश आई है रेणुका गौर इनकी तरफ से.

क्या बात है, रेणुका जी ने बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है, तो अब इनकी फरमाइश पूरी करना ही है। बाय द वे दोस्तों, आपकी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम तक पहुंचाइए और फिलहाल एंजॉय कीजिए आने वाला सुपर हिट गाना फरमाइश वाला ऑन MGM 90.8 FM।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ

बत्ती गुल और बस बत्ती गुल, यही आजकल शहर में चल रहा है। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM। एक तो ऊपर से सूरज देवता एकदम गर्म हो रहे हैं और नीचे से फिर MSEB वाले बत्ती गुल करके हमें गर्म कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन अपने शहर में हर दिन हो रही है। एक एरिया की क्या बात करूं भाई, शहर के सभी एरियाज में ना 2 से 4 घंटे या किसी किसी एरिया में तो 5-5 घंटे बत्ती गुल हो रही है। और इस गर्मी के मौसम में बत्ती गुल मतलब दुष्कात 13वां महीना मंतुरापन तशी गत होता थे। तो अब सवाल ये उठता है कि यार MSEB वाले कह रहे थे कि हमारा कुछ काम शुरू है, इस वजह से हम थोड़ी देर बत्ती गुल करते, चलो ठीक है 1 घंटा कर दिए, लेकिन 4-4 घंटे बत्ती गुल हो जाती है भाई। और इससे इंसान इतना परेशान हो जाता है और फिर मन में बहुत कुछ कह देता है MSEB वालों को, जो मैं अभी यहाँ पर लफ्ज में नहीं बता सकता। तो मेरी इतनी दरख्वास्त है भाई साहब, आपको जो भी काम करना है आप मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए ना यार, 11-12 बजे तक। क्यों दोपहर के टाइम पर आप बत्ती गुल करते हो, या तो फिर रात के टाइम जब इंसान धूप से थका हारा दिन भर घर लौटता है और सोचता है कि मैं अब घर आके सुकून से सो जाऊंगा कूलर की AC की हवा खाते हुए, उतने में फिर बत्ती गुल हो जाती है। तो ऐसा कर रहे हो आप, याद रखिएगा आम आदमी का शराब बहुत लगता है, समझे क्या? प्लीज आपसे दरख्वास्त है यार, इतना हमें टॉर्चर मत कीजिएगा ये बत्ती गुल करके। पहले हम लोग परेशान है और परेशानियां मत बढ़ाइए, और आपको काम करना है तो मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए। बाकी अब हम लोग कितना भी कहे भाई, इनका जो मन करता है ये वही करेंगे, झेलना तो हम जैसे आम इंसान को ही है, झेल लीजिए और सुनते रहिए।

0: धड़कन बिन कपड़ा कपड़ा बिन तन धड़कन बिन दिल दिल बिन धड़कन पहले बुढ़ापा बाद में बचपन
1: रे सानी धा। अरे बारे मालिक।

अरे वाह मेरे मालिक, खूब है तेरे खेल, करवालों के ऊपर मिट्टी, गधे लगाए तेल। अरे बारे मालिक,

0: कन बिन कपड़ा कपड़ा बिन सन धड़कन बिन दिल दिल बिन धड़कन सहल बुढ़ापा बाद में बचपन मागादे सानी धापा माँ
1: अरे भाई मालिक

अरे बारे मालिक, अरे अरे पाई नकौड़ी नाम करोड़ी लाट की घोड़ी सरपट दौड़ी जाए, अजब अजूबा जो देखे रह जाए, तन बिन कपड़ा धड़कन बिन दिल पहले बुढ़ापा।

पेट्रोल डीजल की सेविंग करनी है इस वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिएगा, ऐसा कहा गया है, हम सभी को पता है, तो यूज कर रहे हो आप? You know what, अपने छत्रपति संभाजीनगर में कितने सिटी बस है, स्मार्ट सिटी बस? 73 स्मार्ट सिटी बस है। पॉपुलेशन कितने है? 18 लाख पॉपुलेशन है। और ये जो बसेस है ये बस मेन रोड के ऊपर ही चलती है शहर के, और जो बीच बीच के रास्ते है गली मोहल्ले वहाँ से ये सिटी बस नहीं गुजरती। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करना है तो सिटी बस भी बढ़ाना बहुत जरूरी हो चुका है। एंड सबसे जरूरी बात, हमारे शहर में सिटी बस कब कहाँ कितने बजे आएगी इसका कोई भी टाइम टेबल नहीं है। एक टाइम था जब सिटी बस नई तरीके से लॉन्च की गई थी, बताया गया था कि हर एक बस स्टॉप के ऊपर टाइम टेबल लगाया जाएगा। इसी के साथ हमें ऑनलाइन भी पता चलेगा ऐप के जरिए कि कौन सी सिटी बस कहाँ पर आएगी, कितने बजे आएगी, ये पूरा GPS के जरिए नोट होने वाला है। लेकिन वो चीज़ बस कागज़ पर ही रह गई थी, ना ऐप अच्छे से चल पाया, ना टाइम टेबल ठीक से अमल हो रहा है इन सिटी बस का। और जिन्हें सिटी बस से जाना है एक एक घंटा इंतजार करना पड़ता है बस आने का। वो बस कभी आती है कभी नहीं आती, किसी स्टॉप पर रुकती है किसी स्टॉप पर नहीं रुकती। अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है तो सिटी बसेस बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जाकर 18 लाख लोग सही तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर पाए। स्टे ट्यून्ड।

एनटीए पता है आपको क्या होता है? नेशनल तमाशा एजेंसी. यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम. एनटीए ने तो पूरा तमाशा ही क्रिएट कर दिया है. नीट के पेपर लीक हो रहे हैं और उनका आजकल एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है. ये पेपर लीक होने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर एक लाइन उन्होंने कही थी कि दिस इज नॉट योर स्कूल टेस्ट. हाँ भाई, जानता हूँ ये हमारा स्कूल टेस्ट नहीं है और हमारा स्कूल टेस्ट तो लीक भी नहीं होता था. स्कूल के कॉलेज के टेस्ट भी हमारे लीक नहीं होते थे. भाई, आपका नेशनल लेवल का एग्जाम होने के बावजूद, इतना हाई सिक्योरिटी एग्जाम होने के बावजूद भी आपका पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है भाई, बहुत सारी. अब बोलेंगे कि यार री एग्जाम हो जाएंगे, उसमें क्या इतना बड़ी प्रॉब्लम है. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि यार फिर से उन्हें फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ेगा क्या, तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा. लेकिन सवाल ये उठता है यार, कोई कोई ना तो स्टूडेंट्स इतने गरीब होते हैं, उनके पास 500-1000 रुपए भी नहीं होते और सेंटर बहुत दूर आते हैं, तो कोई अपना डेली का काम करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, फिर से वो पैसे जमा करो उस बच्चे को, कई 500-600 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर पर भेज दो एग्जाम देने के लिए, तो कितना बड़ा ये इशू है. लेकिन इतना बड़ा इशू होने के बावजूद भी ये कुछ पहली बार नहीं हुआ है. और पिछले 3 से 4 साल में ऐसे केसेस इंडिया में कितने आए हैं पता है? बताऊंगा मैं आपको कुछ ही देर के बाद के इंडिया में पिछले 3 और 4 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनों का कितना नुकसान हुआ है. स्टे ट्यून्ड.

पेपर लीक आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। इससे नुकसान उन बच्चों का होता है जो सच में मेहनत करके पढ़ाई करना चाहते हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। और पिछले 3 से 4 सालों में भारत में पेपर लीक के मामले दिन दुगने और रात चौगने तरक्की कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2023 के बीच में तकरीबन 41 बड़े पेपर लीक हुए हैं। अगर सिर्फ पिछले 3 साल की बात करें यानी कि 2023 से 2026 की, तो 2023 में 10 बड़े मामले सामने आए हैं जिसमें बिहार पुलिस, TSPSC, महाराष्ट्र एग्जाम, आसाम, इन सभी राज्यों में पेपर लीक के केसेस सामने आए हैं। 2024 में कम से कम 7 से 10 बड़े नेशनल और स्टेट लेवल एग्जाम के पेपर लीक हुए। 2024 में भी नीट UG का पेपर लीक हो गया था, फिर UGC नेट इसका पेपर लीक हो गया था, UP पुलिस कांस्टेबल एंड RPSC इनका भी पेपर लीक हो गया था। और इसी के साथ 2025 से 26 में नीट UG कंट्रोवर्सी जो अभी हाल ही में चल रही है, तो इसका भी पेपर लीक हो गया है। यानी कि कुल मिलाकर पिछले 3 साल में लगभग 25 से 30 बड़े पेपर लीक हो गए हैं। इसमें रिक्वायरमेंट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम शामिल है। बट ये मामले कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रहे और री एग्जाम अभी हो रही है। बस इतना ही कहूंगा कि बच्चा कंपनी पढ़ाई कीजिएगा, वही एक आपके पास ऑप्शन है। स्टे ट्यून्ड।

0: आपके पास दो मिनट ही लूंगा, लेकिन इससे ना तो किसी की जिंदगी बच सकती है। आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM। गर्मी बढ़ती जा रही है, हम सबके पास ऑप्शन है, एसी, कूलर, फ्रिज, ठंडा पानी सब कुछ है, पर कभी सोचा है उन छोटे परिंदों के बारे में जो दिन भर इस तेज धूप में उड़ते रहते हैं? ना कोई छत, ना कोई पानी का जग, बस आसमान और गर्मी। और जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो वो लिटरली प्यास से मर जाते हैं। दोस्तों, ये कोई इमोशनल स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। और आजकल ना तो बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो कि बिना पानी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इसलिए आज से एक छोटी शुरुआत हम कर सकते हैं। एक छोटा सा कदम आपने उठाया और मैंने उठाया, तो ऐसे हजारों परिंदे हैं जो कि बच सकते हैं इस गर्मी में, और उनकी जान भी बच सकती है। तो आपको करना क्या है, अपने घर के बाहर या छत पर एक छोटी सी प्लेट या मिट्टी का बर्तन रखना है जिसमें पानी रखना है, और पॉसिबल हो तो थोड़ा दाना भी रख सकते हो जो कि परिंदे खा सकते हैं खाने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और किसी एक चिड़िया की जान बच जाएगी इस छोटे से कदम की वजह से। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये काम ना महंगा है ना मुश्किल है, बस थोड़ी सी इंसानियत चाहिए। हर किसी के घर के बाहर थोड़ी जगह होती है, छत होता है या तो फिर बालकनी होती है, खिड़की होती है, वहाँ पर बस एक प्लेट में या छोटी कटोरी में भी आपने पानी रख दिया तो उस वजह से परिंदों की जिंदगी बच सकती है और इस गर्मी में उन्हें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और यही चीज आप फॉलो कर सकते हो अपने घर के बाहर भी बाकी जानवरों के लिए एक बकेट में पानी रखकर। आपका छोटा इंसानियत का कदम किसी की जिंदगी बचाएगा। सो प्लीज यार, इतना काम आप कीजिएगा और किसी की जान बचाइएगा, और सुनते रहना।
1: कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी च्या यूजी आणि पीजी साठी ऍडमिशन मिळवा। बीटेक आणि एमटेक कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
2: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल। शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा।
3: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26 MGM युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको। विजिट mgmu.ac.in, कॉल 9503 08 2

0: कुछ वेब सीरीज बस एंटरटेन नहीं करती है, सीधा दिल और दिमाग के ऊपर अटैक करती है। और ऐसी एक सीरीज है सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2। इसका फर्स्ट पार्ट 2 साल पहले आया, सेकंड सीजन रिलीज हो चुका है। फिल्मी मोटिवेशन वाली स्टोरी नहीं है जहां आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है, ये मेरी और आपकी जिंदगी से मिलती जुलती रियल कहानी है। ये सीरीज रियलिटी दिखाती है, स्ट्रगल दिखाती है और वो प्रेशर दिखाती है जो हर मिडिल क्लास ड्रीम के पीछे होता ही है। और भाई इस वेब सीरीज के डायलॉग, इसे मानना पड़ेगा अमरीश वर्मा को जिन्होंने ये वेब सीरीज लिखी है, डायरेक्ट की है और इसमें एक्टिंग भी की है जिम्मी की। और बात इसके डायलॉग की करें तो
1: उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, खुदा मैं क्या जोर से जीता।
0: मतलब कितना गहरा डायलॉग है यार, हम सभी लोग ना तो उम्र भर ख्याली भूतों से डरते हैं और वो ख्याली भूत हमारे अंदर ही होते हैं यार। अब इस वेब सीरीज के बारे में इस वेब सीरीज के बारे में जितना बताए उतना कम है। सोशल मीडिया पर इसकी रील्स वायरल हो रही है और इंडिया की अब तक की सबसे हाई रेटेड वाली वेब सीरीज बन चुकी है। 9.2 की इसको रेटिंग मिली है। तो सीजन 2 इसका देखिएगा, रिलीज हो चुका है। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, मुझे तो बहुत पसंद आई यार। आप देखने के बाद आपको कैसी लगी जरूर मुझे बताना। DM on Insta RJ Adnan and stay tuned.

0: आपको पता है, आप ना तो मेरे साथ 24/7 भी कनेक्ट रह सकते हो। आरजे अदनान आपके साथ है।
1: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
0: देखो यार, शो में ना तो मेरी और आपकी मुलाकातें तो होती है, को मुझसे कनेक्ट रहना है यार, कुछ बात शेयर करनी है, कुछ बताना हो, जो कुछ भी बातें करनी हो ना, तो अपना सोशल मीडिया तो है ना यार। सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है आरजे अदनान, इस नाम से मेरा पेज है। अब देखो, एंटरटेनमेंट के लिए ना तो पहले रेडियो यूज हुआ करता था, अब तो रेडियो तो है, उसी के साथ साथ आपको आपके हाथ में भी एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो सोशल मीडिया के जरिए हो ही जाता। और मेरे ना तो जो कुछ रील्स में बनाता हूँ ना, एंटरटेनमेंट वाले होते, तो आपका वहां पर भी ना तो मैं मनोरंजन करूंगा ही, चाहे फिर वो मिनी ब्लॉग हो, शायरी हो, कुछ फनी वीडियो हो, इन सब तरीकों से ना तो मैं आपका मनोरंजन करने के लिए सोशल मीडिया पर अवेलेबल हूँ। तो एक काम कीजिएगा, अपना मोबाइल हाथ में लीजिए, ले लिया क्या, ब्लॉग ओपन कीजिए, इंस्टाग्राम ओपन करें, वहां पर सर्च करें आरजे ADNAN अदनान, अदनान मत करो, बहुत से लोग ना तो मेरा नाम ही गलत लिखते, अदनान, अदनान नहीं हूं यार मैं, ज्ञानी आदमी हूं, आरजे अदनान ADNAN, ये मेरा इंस्टा आईडी है। वहां पर ओपन करने के बाद देखो यार, लेफ्ट साइड में ना तो आपको ग्रीन कलर का बटन दिखेगा, हाँ एग्जैक्टली वही, अब आपकी प्यारी सी उंगली से उसको क्लिक करो और मुझे फॉलो भी करो। और देखो, मैं और आप ना तो फिर 24/7 कनेक्ट रह पाएंगे। सो इंस्टा पर आने के बाद मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा और वहां पर भी अपना मनोरंजन मैं जारी रखूंगा। सो फॉलो कीजिए और बाकी सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ MGM 90.8 FM।

फ्राइडे के दिन बिना तो ऐसी जिद होती है, वीकेंड को सोच सोच के आज का दिन निकलता है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, घड़ी में एग्जैक्टली 10:53 का वक्त हो चुका है। आई होप कि अब तक आप इस धूप से झुलसते हुए अपने ऑफिस तक पहुंच गए होंगे और राहत की सांस ले रहे होंगे कि भाई फाइनली मैं आ गया, और एसी के नीचे आप आराम से आज का दिन गुजार रहे होंगे। वैसे आज तो है फ्राइडे यार, और फ्राइडे एकदम रिलैक्स मूड में आपका चल ही रहा है, आई नो। और फिल्मी फ्राइडे होता है, किसी ऑफिस में फन फ्राइडे भी होता है, ऐसे नमूने कुछ चीज़ें चल जाती है। खैर आप इस दिन को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, और अभी तो मेरा वक्त हो चुका है आपसे अलविदा लेने का, टाटा बाय बाय बाय करने का। मैं मिलूँगा आपसे कल सुबह ठीक 7 बजे, तब तक के लिए ख्याल रखिए। और 11 बज रहे, धूप है, 12 से शाम 4 बजे तक दोपहर में बाहर निकलना थोड़ा अवॉइड करें, वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। बी सेफ, बी केयरफुल। बाकी तो शो के बाद भी अपना कनेक्शन यूं ही बरकरार रह सकता है, कैसे DM कीजिएगा इंस्टा पर, वहाँ पर मैं मिलूँगा आपको। बाकी बहुत सारी बातें वहाँ पर चलती है, और इंस्टा पर आई गए तो फॉलो भी आप मुझे कर सकते हो, क्या करना ही पड़ेगा आपको, कीजिएगा। और कीप मुस्कुराना एंड एंजॉय करना आने वाला सुपर डुपर हिट गाना। तब तक के लिए RJ अदनान लेता है आपसे अलविदा। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94 नेटिव एफएम रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात।

0: थोड़ी खाली सी जगह।
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
3: मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे।
2: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात।

0: एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM साथ है तो बात है।

लता जी लोग कहते हैं भी तुम्हें इतना मानती हैं, लता जी तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इन को उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पर करम।

आपकी मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गया होगा। अगर दिन थोड़ा बिजी रहा, थोड़ा थका देने वाला रहा, तो वक्त है थोड़ा रिलैक्स होने का, थोड़ा मुस्कुराने का और थोड़ा खुद के लिए समय निकालने का। शाम का समय कुछ अलग ही होता है ना। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद जब मौसम थोड़ा शांत होता है, सड़कें रोशनी से भर जाती है और चाय या कॉफी का कप हाथ में आता है, तो लगता है कि बस कुछ पल अपने लिए मिल गए। और अगर इन पलों में साथ हो आपके मन पसंदीदा म्यूजिक, तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो चाहे आप अभी घर जा रहे हो, दोस्तों के साथ हो, परिवार के साथ बैठे हो या फिर अपने काम में बिजी हो, हम आपके साथ हैं अगले कुछ शानदार पलों के लिए। यहाँ होगी बातें, म्यूजिक, थोड़ा मजा और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स। तो अपना मूड सेट कर लीजिए, स्माइल ऑन कर लीजिए और इस खूबसूरत शाम को थोड़ा और स्पेशल बनाते हैं। अब बिना इंतजार किए बढ़ते हैं हमारे पहले शानदार गाने की तरफ। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए एंड ऑफ कोर्स स्टेडियम टाइम जिम रानी पॉइंट एफएम साथ है, तो बात है

नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑफ कोर्स अच्छे ही हुए होंगे, मुझे जो सुन लिया है आपने। दिस इज आर जे मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन MGM 90.8 FM। आज एक छोटी सी हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं जो शायद आपकी मॉर्निंग रूटीन को थोड़ा बेहतर बना सकती है। आजकल आपने कई लोगों को मॉर्निंग में मोरिंगा पाउडर इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। कहा जाता है कि मोरिंगा में कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कुछ लोग इसे सुबह गुनगुने पानी, स्मूदी या जूस के साथ लेना पसंद करते हैं। माना जाता है कि सुबह मोरिंगा लेने से शरीर को अच्छी एनर्जी मिल सकती है और दिन की शुरुआत फ्रेश महसूस होती है। साथ ही ये इम्यून सिस्टम और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में भी मदद कर सकता है। लेकिन हर चीज़ की तरह इसका इस्तेमाल भी सही मात्रा में करना ज़रूरी होता है। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है या आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो अपनी डाइट में कोई नई चीज़ जोड़ने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह लेना अच्छा होता है। तो दोस्तों, अच्छी हेल्थ सिर्फ बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि रोज़ की छोटी छोटी अच्छी आदतों से भी बनती है। अब हेल्थ की इस छोटी सी बात के बाद बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक शानदार गाना। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ तो बात है

नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? ऑफ कोर्स बढ़िया ही है। दिस इज आर जी मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजी 90.8 FM। शाम का समय आते आते एक छोटी सी भूख तो लगभग हर किसी को लगती है। अब ऐसे में अक्सर मन करता है कुछ चटपटा, कुछ तला भुना या फिर कुछ जल्दी मिलने वाला स्नैक खाने का। लेकिन अगर आप कुछ हल्का और थोड़ा हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो सूप एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। शाम की छोटी भूख के लिए एक गर्मा गर्म सूप न सिर्फ पेट को आराम देता है बल्कि आपको हल्का और फ्रेश भी महसूस करा सकता है। चाहे टमाटर सूप हो, वेज सूप हो, स्वीट कॉर्न सूप हो या मिक्स वेजिटेबल सूप, स्वाद के साथ साथ ये शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद करता है। खास बात ये है कि सूप आपको बहुत भारी महसूस नहीं कराता और कई लोगों के लिए ये शाम की हल्की भूख को शांत करने का आसान तरीका बन सकता है। साथ ही अगर इसमें सब्जियाँ शामिल हो तो आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब शाम की छोटी भूख दस्तक दे तो सिर्फ स्वाद ही नहीं तो हेल्थ के बारे में भी सोचिए। हो सकता है एक प्यारा गर्मा गर्म सूप आपकी शाम को थोड़ा और बेहतर बना दे। अब इसी अच्छी बात के साथ चलते हैं, बढ़ते हैं आगे शो में और सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाने ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

है आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आज एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात करना है मुझे आपसे। आप सभी अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया सीखना चाहते हैं और उन्हीं चीजों में एक शानदार ऑप्शन आपके लिए है कोई नई फॉरेन लैंग्वेज सीखना। आज की दुनिया पहले से कई ज़्यादा जुड़ी हुई है, ऐसे में सिर्फ अपनी भाषा ही नहीं बल्कि कई नई भाषा जानना भी आपके लिए नए मौके खोल सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो, स्पैनिश हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो या कोई दूसरी भाषा। हर नई भाषा अपने साथ एक नई दुनिया लेकर आती है। कई लोग फॉरेन लैंग्वेज सिर्फ पढ़ाई या नौकरी के लिए सीखते हैं, लेकिन ये सिर्फ करियर तक सीमित नहीं है। इससे आप अलग अलग देशों की संस्कृति को समझ सकते हैं, नए लोगों से जुड़ सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हैं। शुरुआत बड़ी होने की जरूरत नहीं है, रोज कुछ नए शब्द सीखना, छोटे वाक्य बोलना या कुछ मिनट प्रैक्टिस करना भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे यही छोटी कोशिशें आगे चलकर बड़े फायदे दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने फ्यूचर में कुछ नया जोड़ना चाहते हैं तो शायद एक नई भाषा सीखना आपके लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। अब इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ बेहतरीन गाने ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आज के समय में लगभग हर फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट बन चुकी है। मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। आज का समय बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या फिर दुनिया के अलग अलग लोगों से जुड़ना हो, कई जगहों पर इंग्लिश का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए आज के समय में इंग्लिश सीखना और समझना कई लोगों के लिए एक उपयोगी स्किल माना जाता है। आई नो मैं ज़्यादा ही हिंदी में बात कर रही हूँ क्योंकि यार ये बात ही कुछ ऐसी है, लेकिन यहाँ एक बात याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश जानना अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अपनी भाषा कम महत्वपूर्ण हो जाती है। अपनी मातृभाषा हमारी पहचान होती है और नई भाषा सीखना हमारी ताकत बढ़ाती है। अगर आपकी इंग्लिश अभी बहुत अच्छी नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, शुरुआत छोटे कदमों से भी हो सकती है। रोज कुछ नए शब्द सीखिए, छोटे वाक्य बोलना, इंग्लिश गाने सुनना या किताबें पढ़ना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है और सीखना भी आसान होने लगता है। तो दोस्तों, इस तेजी से बदलती दुनिया में नई चीजें सीखते रहना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। कई नई भाषा आपके लिए नए अवसर और नए अनुभव लेकर आ सकती है। अभी इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ शानदार गाने ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे मनीषा। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारे फ्यूचर और हमारी ग्रोथ को दोनों को भी बहुत जरूरी है और बढ़ाने में काफी मदद कर सकती है, अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाना यानी पॉलिश करना। हम सभी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट या खासियत जरूर होती है। किसी को लिखना पसंद होता है, किसी को गाना, किसी को बात करना, तो कोई टेक्नोलॉजी या क्रिएटिव काम में अच्छा होता है। लेकिन सिर्फ स्किल होना काफी नहीं होता, समय के साथ उसे बहुत बेहतर बनाना भी जरूरी होता है। जैसे एक हीरे को चमकने के लिए तराशना पड़ता है, वैसे ही हमारी स्किल्स को भी समय और मेहनत की जरूरत होती है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहे, नई चीजें ट्राई करें और खुद को अपडेट करें, तो वही धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है और हमारी पहचान भी मजबूत होती है। आज की इस तेज और कॉम्पिटिटिव दुनिया में सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाते रहना भी बहुत जरूरी है। याद रखिए, छोटी छोटी कोशिशें ही आगे चलकर बड़े बदलाव लाती है। तो दोस्तों, खुद पर काम करते रहिए, सीखते रहिए और अपनी स्किल्स को चमकाते रहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके खुद की काबिलियत होती है। इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ बेहतरीन सॉन्ग ओनली ऑन MGM 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: वक्त आ गया है आपसे आज के लिए विदा लेने का। दिस इज आरजी मनीषा एंड यू आर लिसनिंग मी ऑन एमजी 90.8 एफएम। सच कहे तो जब अच्छी बातें, अच्छी म्यूजिक और आपका साथ मिल जाए तो समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उम्मीद है कि आज का हमारा साथ आपके लिए अच्छा रहा होगा। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपकी शाम में थोड़ी खुशी, थोड़ी पॉजिटिविटी और ढेर सारा एंटरटेनमेंट जोड़ सके। अगर हमारी बातें आपके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान ला पाए तो हमारा साथ सफल हुआ। याद रखिए, जिंदगी में हर दिन कुछ नया सीखने, कुछ अच्छा करने और मुस्कुराने की एक नई वजह लेकर आती है। इसलिए खुश रहिए, अपने लोगों के साथ समय बिताइए, अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों को एंजॉय कीजिए और ऑफ कोर्स अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। फिर मुलाकात होगी एक नए दिन, नई शाम और नई बातों के साथ, नई सोच और नई जोश के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए एंड ऑफ कोर्स गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड टू एमजी 90.8 एफएम। साथ है तो बात है।
1: कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी च्या यूजी आणि पीजी साठी ऍडमिशन मिळवा। बीटेक आणि एमटेक कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी साठी एमजीएम युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेस च्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
2: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स चे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल। शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंट ची हमी सुद्धा।
3: ऍडमिशन ओपन फॉर 2025-26 एमजीएम युनिव्हर्सिटी City and 6 Sidco. Visit mgmu.ac.in. Call 950-308-2913.
4: Admission open. MGM University School of Engineering and Technology. Programs B.Tech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission, visit mgmu.ac.in. Or contact 9371714253 or visit MGM campus in 6th Circle, Chhatrapati Sambhajinagar.

बत्ती गुल, बत्ती गुल और बस बत्ती गुल, यही आजकल शहर में चल रहा है। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM। एक तो ऊपर से सूरज देवता एकदम गरम हो रहे हैं और नीचे से फिर MSEB वाले बत्ती गुल करके हमें गरम कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन अपने शहर में हर दिन हो रही है। एक एरिया की क्या बात करूं भाई, शहर के सभी एरियाज में ना 2 से 4 घंटे या किसी किसी एरिया में तो 5-5 घंटे बत्ती गुल हो रही है। और इस गर्मी के मौसम में बत्ती गुल मतलब दुष्कार 13 महीना मंतुरापन तशी गत होता थे। तो अब सवाल ये उठता है कि यार MSEB वाले कह रहे थे कि हमारा कुछ काम शुरू है, इस वजह से हम थोड़ी देर बत्ती गुल करते, चलो ठीक है 1 घंटा कर दिया, लेकिन 4-4 घंटे बत्ती गुल हो जाती है भाई। और इससे इंसान इतना परेशान हो जाता है और फिर मन में बहुत कुछ कह देता है MSEB वालों को, जो मैं अभी यहाँ पर लफ्जों में नहीं बता सकता। तो मेरी इतनी दरख्वास्त है भाई साहब, आपको जो भी काम करना है आप मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए ना यार, 11-12 बजे तक। क्यों दोपहर के टाइम पर आप बत्ती गुल करते हो, या तो फिर रात के टाइम जब इंसान धूप से थका हारा दिन भर घर लौटता है और सोचता है कि मैं अब घर आके सुकून से सो जाऊंगा कूलर की AC की हवा खाते हुए, उतरे में फिर बत्ती गुल हो जाती है। तो ऐसा कर रहे हो आप, याद रखिएगा आम आदमी का शराब बहुत लगता है, समझे क्या? प्लीज आपसे दरख्वास्त है यार, इतना हमें टॉर्चर मत कीजिएगा ये बत्ती गुल करके, पहले हम लोग परेशान है और परेशानियां मत बढ़ाइए। और आपको काम करना है तो मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए, बाकी अब हम लोग कितना भी कहे भाई, जिनका जो मन करता है ये वही करेंगे, झेलना तो हम जैसे आम इंसान को ही है। झेल लीजिए और सुनते रहिए।

0: गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर, क्या मैं करूं गोरी, मुझे तुझसे है प्यार, जो न तुझे देखूं न आए करार।
1: हटो जाओ ना बनाओ, हटो जाओ, हाय हाय।

हो चल पीछा छोड़ हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे ना।

0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया।
2: पेट्रोल डीजल की सेविंग करनी है इस वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिएगा, ऐसा कहा गया है, हम सभी को पता है। तो यूज कर रहे हो आप? You know what, अपने छत्रपति संभाजीनगर में कितने सिटी बस है, स्मार्ट सिटी बस? 73 स्मार्ट सिटी बस है। पॉपुलेशन कितनी है? 18 लाख पॉपुलेशन है। और ये जो बसेस है ये बस मेन रोड के ऊपर ही चलती है शहर के, और जो बीच बीच के रास्ते है गली मोहल्ले वहां से ये सिटी बस नहीं गुजरती। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करना है तो सिटी बस भी बढ़ाना बहुत जरूरी हो चुका है। एंड सबसे जरूरी बात, हमारे शहर में सिटी बस कब कहाँ कितने बजे आएगी इसका कोई भी टाइम टेबल नहीं है। एक टाइम था जब सिटी बस नई तरीके से लॉन्च की गई थी, बताया गया था कि हर एक बस स्टॉप के ऊपर टाइम टेबल लगाया जाएगा। इसी के साथ हमें ऑनलाइन भी पता चलेगा ऐप के जरिए कि कौन सी सिटी बस कहाँ पर आएगी, कितने बजे आएगी, ये पूरा GPS के जरिए नोट होने वाला है। लेकिन वो चीज़ बस कागज पर ही रह गई थी, ना ऐप अच्छे से चल पाया, ना टाइम टेबल ठीक से अमल हो रहा है इन सिटी बस का। और जिन्हें सिटी बस से जाना है एक एक घंटा इंतजार करना पड़ता है बस आने का। वो बस कभी आती है कभी नहीं आती, किसी स्टॉप पर रुकती है किसी स्टॉप पर नहीं रुकती। अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना है तो सिटी बसेस बढ़ाने पड़ेंगे, तभी जाकर 18 लाख लोग सही तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर पाए। स्टे ट्यून्ड।

0: मेरे मालिक। खूब है तेरे खेल,
1: खूब है
0: सर वालों के ऊपर मिट्टी, गधे लगाए तेल। अरे वारे मालिक, अरे अरे घर को बाहर, बाहर को घर, सड़क पे बिस्तर, लंबी लोट लगाए, पत्थर पूजे और हमको ठुकराए। तन बिन कपड़ा, कपड़ा बिन तन, धड़कन बिन दिल, दिल बिन धड़कन, पहले बुढ़ापा बाद में बचपन। मागा दे सानी धापा माँ।
2: अरे बारे मालिक,

अरे बारे मालिक, अरे अरे पाई न कौड़ी नाम करोड़ी काट की घोड़ी सरपट दौड़ी जाए, अजब अजूबा जो देखे रह जाए, तन बिन कपड़ा धड़कन बिन दिल, पहले बुढ़ापा

0: कुछ वेब सीरीज बस एंटरटेन नहीं करती है, सीधा दिल और दिमाग के ऊपर अटैक करती है। और ऐसी एक सीरीज है सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2। का फर्स्ट पार्ट 2 साल पहले आया, सेकंड सीजन रिलीज हो चुका है। फिल्मी मोटिवेशन वाली स्टोरी नहीं है जहां आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है, ये मेरी और आपकी जिंदगी से मिलती जुलती रियल कहानी है। ये सीरीज रियलिटी दिखाती है, स्ट्रगल दिखाती है और वो प्रेशर दिखाती है जो हर मिडिल क्लास ड्रीम के पीछे होता ही है। और भाई इस वेब सीरीज के डायलॉग, वैसे मानना पड़ेगा अमरीश वर्मा को जिन्होंने ये वेब सीरीज लिखी है, डायरेक्ट की है और इसमें एक्टिंग भी की है जिम्मी की। और बात इसके डायलॉग की करें तो
1: उम्र भर ख्याली भूतों से अगर मैं ना डरता, खुदा मैं क्या जोर से जीता।
0: मतलब कितना गहरा डायलॉग है यार, हम सभी लोग ना तो उम्र भर ख्याली भूतों से डरते हैं और वो ख्याली भूत हमारे अंदर ही होते हैं यार। अब इस वेब सीरीज के बारे में इस वेब सीरीज के बारे में जितना बताए उतना कम है। सोशल मीडिया पर इसकी रील्स वायरल हो रही है और इंडिया की अब तक की सबसे हाई रेटेड वाली वेब सीरीज बन चुकी है। 9.2 की इसको रेटिंग मिली है। तो सीजन 2 इसका देखिएगा, रिलीज हो चुका है। अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, मुझे तो बहुत पसंद आई यार। आप देखने के बाद आपको कैसी लगी जरूर मुझे बताना। DM ऑन इंस्टा RJ अदनान एंड स्टे ट्यून्ड।
2: UG आणि PG साठी ऍडमिशन मिळवा। BTech आणि MTech कॉस्मेटिक टेक्नॉलॉजी साठी MGM युनिव्हर्सिटी मध्ये बेसिक अँड अप्लाइड सायन्सेसच्या अंतर्गत आजच आपला प्रवेश निश्चित करा,
3: ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्सचे फॉर्म्युलेशन, रॉ मटेरियल्स, त्यांची केमिस्ट्री आणि अनालिसिस सोबतच न्यू ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी ही शिकण्यास मिळेल। शिवाय विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये प्लेसमेंटची हमी सुद्धा।
4: ऍडमिशन्स ओपन फॉर 2025-26 MGM युनिव्हर्सिटी एंड 6 सिडको। विजिट mgmu.ac.in, कॉल 9503082913।
5: Admission open MGM University School of Engineering and Technology. Programs BTech 4 years after HSC. Computer Science and Engineering, IoT, Cyber Security including Blockchain Technology. Computer Science and Engineering, Cyber Security. Electronics Engineering, VLSI Design and Technology. Electrical Engineering, Robotics and Automation. For admission visit mgmu.ac.in or contact 9371714253 or visit MGM Campus N6 Sidco, Chhatrapati Sambhajinagar।
6: बाजू।

एनटीए पता है आपको क्या होता है? नेशनल तमाशा एजेंसी. यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 FM. एनटीए ने तो पूरा तमाशा ही क्रिएट कर दिया है. नीट के पेपर लीक हो रहे हैं और उनका आजकल एक ट्वीट बहुत वायरल हो रहा है. ये पेपर लीक होने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर एक लाइन उन्होंने कही थी कि दिस इज नॉट योर स्कूल टेस्ट. हाँ भाई, जानता हूँ ये हमारा स्कूल टेस्ट नहीं है और हमारा स्कूल टेस्ट तो लीक भी नहीं होता था. स्कूल के कॉलेज के टेस्ट भी हमारे लीक नहीं होते थे. भाई, आपका नेशनल लेवल का एग्जाम होने के बावजूद, इतना हाई सिक्योरिटी एग्जाम होने के बावजूद भी आपका पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है भाई, बहुत सारी. अब बोलेगे कि यार री एग्जाम हो जाएंगे, उसमें क्या इतना बड़ी प्रॉब्लम है. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि यार फिर से उन्हें फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ेगा क्या, तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा. लेकिन सवाल ये उठता है यार, कोई कोई ना तो स्टूडेंट्स इतने गरीब होते उनके पास 500-1000 रुपए भी नहीं होते और सेंटर बहुत दूर आते, तो कोई अपना डेली का काम करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, फिर से वो पैसे जमा करो उस बच्चे को कई 500-600 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर पर भेज दो एग्जाम देने के लिए, तो कितना बड़ा ये इशू है. लेकिन इतना बड़ा इशू होने बावजूद भी ये कुछ पहली बार नहीं हुआ है. और पिछले 3 से 4 साल में ऐसे केसेस इंडिया में कितने आए हैं पता है? बताऊंगा मैं आपको कुछ ही देर के बाद कि इंडिया में पिछले 3 और 4 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनों का कितना नुकसान हुआ है. स्टे ट्यून्ड.

0: पेपर लीक आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। इससे नुकसान उन बच्चों का होता है जो सच में मेहनत करके पढ़ाई करना चाहते हैं। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। और पिछले 3 से 4 सालों में भारत में पेपर लीक के मामले दिन दुगने और रात चौगने तरक्की कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2023 के बीच में तकरीबन 41 बड़े पेपर लीक हुए हैं। अगर सिर्फ पिछले 3 साल की बात करें यानी कि 2023 से 2026 की, तो 2023 में 10 बड़े मामले सामने आए हैं, जिसमें बिहार पुलिस, TSPSC, महाराष्ट्र एग्जाम, आसाम, इन सभी राज्यों में पेपर लीक के केसेस सामने आए हैं। 2024 में कम से कम 7 से 10 बड़े नेशनल और स्टेट लेवल एग्जाम के पेपर लीक हुए। 2024 में भी नीट UG का पेपर लीक हो गया था, फिर UGC नेट इसका पेपर लीक हो गया था, UP पुलिस कांस्टेबल एंड RPSC इनका भी पेपर लीक हो गया था। और इसी के साथ 2025 से 26 में नीट UG कंट्रोवर्सी जो अभी हाल ही में चल रही है, तो इसका भी पेपर लीक हो गया है। यानी कि कुल मिलाकर पिछले 3 साल में लगभग 25 से 30 बड़े पेपर लीक हो गए हैं। इसमें रिक्वायरमेंट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम शामिल है। बट ये मामले कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रहे और री एग्जाम अभी हो रही है। बस इतना ही कहूंगा कि बच्चा कंपनी पढ़ाई कीजिएगा, वही एक आपके पास ऑप्शन है। स्टे ट्यून्ड।
1: तो धर्मद्वेष्टा बहलोल बहुतच बळबळ करीत, त्यास थरावे अथवा मारावे,
2: शक्य तो मारावे।

आपके बस दो मिनट ही लूंगा, लेकिन इससे ना तो किसी की जिंदगी बच सकती है। आप सुन रहे हो MGM 90.8 FM। गर्मी बढ़ती जा रही है, हम सबके पास ऑप्शंस है, एसी, कूलर, फ्रिज, ठंडा पानी सब कुछ है, पर कभी सोचा है उन छोटे परिंदों के बारे में जो दिन भर इस तेज धूप में उड़ते रहते हैं? ना कोई छत, ना कोई पानी का जग, बस आसमान और गर्मी। और जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो वो लिटरली प्यास से मर जाते हैं। दोस्तों, ये कोई इमोशनल स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। और आजकल ना तो बहुत सारे ऐसे परिंदे हैं जो कि बिना पानी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो इसलिए आज से एक छोटी शुरुआत हम कर सकते हैं। एक छोटा सा कदम आपने उठाया और मैंने उठाया, तो ऐसे हजारों परिंदे हैं जो कि बच सकते हैं इस गर्मी में और उनकी जान भी बच सकती है। तो आपको करना क्या है, अपने घर के बाहर या छत पर एक छोटी सी प्लेट या मिट्टी का बर्तन रखना है जिसमें पानी रखना है, और पॉसिबल हो तो थोड़ा दाना भी रख सकते हो जो कि परिंदे खा सकते हैं खाने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और किसी एक चिड़िया की जान बच जाएगी इस छोटे से कदम की वजह से। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह काम ना महंगा है ना मुश्किल है, बस थोड़ी सी इंसानियत चाहिए। हर किसी के घर के बाहर थोड़ी जगह होती है, छत होता है या तो फिर बालकनी होती है, खिड़की होती है, वहाँ पर बस एक प्लेट में या छोटी कटोरी में भी आपने पानी रख दिया तो उस वजह से परिंदों की जिंदगी बच सकती है और इस गर्मी में उन्हें पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और यही चीज आप फॉलो कर सकते हो अपने घर के बाहर भी बाकी जानवरों के लिए एक बकेट में पानी रखकर। आपका छोटा इंसानियत का कदम किसी की जिंदगी बचाएगा। सो प्लीज यार, इतना काम आप कीजिएगा और किसी की जान बचाइएगा। और सुनते रहना।

0: सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94.8 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनों, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।